0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited-time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012-7473 543

0: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility. Go to the Shipley College website.
1: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
2: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
1: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
2: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
1: बुकिंग्स और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01274-733-732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: कफ्सन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative. Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: ऋषि's विजन प्रेजेंट्स आनंद मूर्ति गुरुमा इन लंदन। लर्न टाइमलेस योगिक विजडम डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर्ड मास्टर। जॉइन अ 3-day सीरीज ऑफ इनलाइटनिंग टॉक्स ऑन योग सूत्रास फॉर रियलाइजिंग द ट्रू सेल्फ, 11th to 13th September 2026। लाइफ चेंजिंग सेशंस फीचरिंग प्रोफाउंड टॉक्स, Practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202, Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6pm to 8pm. And Sunday 13th September, 3pm to 5pm. Free event. All are welcome. For more details, call AK Basra, 07977-201226. Mirdosh Kumar, 07899-055525. Gurkirit, 07886-545970. Usha, 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: हवा के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है जो कि 103.2 एफएम स्टूडियो पर और 100.6 एफएम पर पूरे वेस्ट यॉर्कशायर में सुनाई देता है। अगर आप डीएबी पे सुनना चाहें तो आप हमें ब्रेडफोर्ड, कीतले, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नले, डार्विन, नेल्सन, अक्रिंगटन और मिल्टन कीन्स में आप सुन सकते हैं। और जनाब कल का स्पेशल दिन होगा क्योंकि कल आप सनराइज रेडियो को लंदन में भी 12 बजे के बाद आप सुन सकेंगे। ज़ाहिर है मेरे प्रोग्राम के दौरान ही लाइव को जो है नशरियात लंदन में जाएगी और खुशकिस्मती से मेरी ही पहली आवाज़ वहाँ जाएगी क्योंकि प्रोग्राम मेरा होगा और साथ में हमारे साथी प्रेजेंटर भी होंगे, उनकी आवाज़ भी जाएगी। तो जनाब आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज़ पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा। अगर खुदा न खास्ता बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एबी का जिन्होंने पिछले 2 घंटों से आपके लिए बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम पेश किया। एबी बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथी प्रेजेंटर हैं उमा खान जी,
1: अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल।
0: बस इतना सा। तो दोस्तों हम प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और 2 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। मिले जुले गीत होंगे, आपकी डेडिकेशन होगी। तो चलेंगे प्रोग्राम को शुरू करेंगे एक शोक और चंचल गीत के साथ, आप सभी सुनने वालों के नाम करेंगे तो एंजॉय कीजिएगा इस गीत को।
2: Hit of the Hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6, and even 8-bedroom homes. Call 0127 428 8252.
3: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the Hour.

0: तो अभी आपने हिट ऑफ द आवर सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। इसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही है 11:15, यानी कि 15:11। कैसा गाना लगा आपको भी? सुन रही थी आप? हाँ, प्रोग्राम नहीं कर रही, आप सुन रही थी
2: जी,
0: आप लिसनर हो इस वक्त
2: जी। क्यों, गाना नहीं, बहुत नाइस गाना था माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा।
0: तो आप क्या समझती हैं कि अब क्या करना है?
2: हमने ब्रेक
0: पे जाना है
2: जी।
0: चलिए शुक्र है, ठीक है जनाब, चलते हैं ब्रेक पे। ब्रेक के बाद एक प्यारा सा गीत होगा आप प्यारे दोस्तों के लिए जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं।
3: नफसेन जायकतुल मौत।
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230300 दास ब्रेडफोर्ड 7230300।
5: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-3504-3।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, बहुत अच्छा लगा। कैसे लगा आपको गीत? और अब माशाल्लाह आप माइक ऑफ होता है, आप बहुत बातें करती हैं, और जब माइक ऑन होता है क्या हो जाता है?
1: मुझे खुद नहीं पता क्या हो जाता है।
0: नहीं,
1: मैं कोशिश कर रही
0: हूं। आप माइक के आगे ही बोलना पड़ेगा आपको, आप जब आपके प्रोग्राम होंगे उस वक्त अमर साथ में तो होगा नहीं, तो इसलिए आप बातें ज्यादा बोलें ताकि लोगों को पता चले कि हमारी नई साथी आई है और आपका टेस्ट कैसा है गानों का, आप किस तरह के
1: पसंद आया,
0: आप गाने किस तरह के पसंद करती हैं, कैसे गाने चलाएंगी आप?
1: मैं

आपके नाम भी होगा ये गीत जो अभी प्ले करने जा रहा हूँ, और स्पेशली गुलाम भाई आप के नाम और आपकी पूरी टीम के नाम, नवीद भाई के नाम और मलिक इम्तियाज साहब आप की पूरी टीम के नाम। लिस्ट किधर गई जनाब, किसी का नाम हो गया तो वैसे तो इफराज जो है ना वो मुझे नहीं छोड़ेगा, हमारा नाम अंकल क्यों नहीं आया। तो मलिक इम्तियाज साहब, इकमाज, मुनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह दिता, उमेर, बाबर, इफराज आपके नाम और हजरा बहन आपके नाम भी और दीगर दोस्तों के नाम भी। चलते हैं, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: जी दोस्तों, अभी आपने एसपी बल्ला सुब्रमण्यम और अनुजा पटवाल की आवाजों में प्यारा सा गीत आपने सुना, और इसके साथ ही वक्त हुआ जाता है टाइम चेक का। तो हुमा खान जी,
1: जी इस वक्त
2: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक।
1: इस वक्त स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि 11:45 हो रहे हैं, दैट्स 11:45, एंड टाइम हो जाता है गीतों का।
0: तो गीतों का नहीं, कमर्शियल का टाइम होगा जी।
1: कमर्शियल का, ओके सॉरी, कमर्शियल का टाइम हुआ जा रहा है। और नदीम मंसूर साहब ने फ़ोन किया था, उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने गाने की फरमाइश की थी, उनका गाना हम ज़रूर से लगाएंगे। एंड इसके बाद कमर्शियल
0: गाना लगाएंगे, तो उसके बाद और भी दोस्त हैं ना, उनके नाम भी लूँगा ना। आप तो नदीम मंसूर साहब का नाम ले लिया, अच्छी बात है, बाकी दोस्तों का भी लेना चाहिए
1: जी।
0: हमें वाजिद भाई उनके लिए भी, और उसके बाद हीरा खान साहब, जनाब तारिजुल्फी साहब, और उसके अलावा गुलाम भाई, सफीउल्लाह भाई, और जी खान साहब
1: जी
0: बिल्कुल बिल्कुल खान साहब, उनके नाम भी और दीगर तमाम दोस्तों के नाम करेंगे। तो चलेंगे सुनेंगे कमर्शियल के बाद नदीम मंसूर साहब की पसंद पे प्यारा सा गीत।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
4: ਗਲੀਆਂ ਘੁੰਮੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕਸੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
5: ਓਹੋ, ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ।
4: ਚਾਚਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਚਾ?
5: ਚਾਚਾ ਜੂਲਰ ਓਕ ਲੇਨ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 9 ਵਾਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਕੰਡੀ ਮਾਰੀ ਨੱਕਾ ਨਤੀਲਾ ਸਿਰਫ 2 pounds, ਕੰਨ ਸਲਾਣੇ ਨਾ 1 pound, ਛਾਪਾਂ ਤੇ ਬੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨੇ ਜ਼ੇਵਰ ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਪਰ ਦੇਣੇ ਨੇ।
4: ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ?
5: ਚਾਚਾ ਜੂਲਰਸ ਓਕ ਲੇਨ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 9, ਟੈਲੀਫੋਨ 01274 488935।
6: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
7: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: तो अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने इंजॉय किया होगा। और ये नदीम मंसूर साहब की फरमाइश पे हमने ये गीत पेश किया। और अब जनाब इस आवर का आखिरी गीत आ रहा है और हम आप दोस्तों के लिए आखिरी गीत जो है वो प्ले करेंगे। तो चलते हैं जनाब, आप तो बोलेंगी नहीं,
1: मैं क्यों नहीं बोलूंगी, जरूर बोलूंगी।
0: ठीक है,
1: मैंने कहा भाई बोल रहे हैं, क्यों बीच में बोलूं।
0: सही है, सही। ठीक है, चलते हैं। अब ये गाना मेरी जानिब से सभी सुनने वालों के नाम।

0: जी सामिन, ये आपका अपना सनरा रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है और हमारे साथ हैं
1: हुमा खान।
0: तो
1: ओके
0: जी, तो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं आपने प्रोग्राम का पहला हिस्सा पसंद किया होगा। कोशिश होगी इस आवर में भी आपके लिए अच्छे और प्यारे से गीत पेश करें। तो हुमा जी, आप प्रोग्राम के दूसरे हिस्से को शुरू करें
1: जी
0: हिट ऑफ द आवर के साथ, और कोई आपकी पसंद का गीत हो तो बताइएगा।
1: जी जी जरूर।
0: ठीक है, तो चलते हैं कि हमें ये गाना याद आ गया, ये गुलाम भाई ने फ़ोन किया था खबरों से पहले। गुलाम भाई बहुत शुक्रिया आपका, और ये आपका पसंदीदा गीतों में से एक गीत है। आप जब भी ये मैं गाना लगाता होता था आप ज़रूर फ़ोन करते होते थे, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये गाना अच्छा लगता है। आपकी जानस पे आपके स्टाफ के नाम करेंगे। और
1: मैं गुलाम भाई को कुछ कह सकती हूँ?
0: क्यों नहीं कह सकती है
1: जी। गुलाम भाई प्लीज अपनी रेडियो की आवाज तेज करें, मैं भी बोल रही हूँ बीच बीच में, भाई अकेले नहीं है।
0: सही है। अच्छा, अब ठीक है। तो गुलाम भाई आप सुन लिया ना कि मैं अकेला प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ। तो चलते हैं जनाब, हिट ऑफ द आवर सुनते हैं और हिट ऑफ द आवर के बाद आप दोस्तों से मिलते हैं।
2: द हिट ऑफ द आवर इज ब्रॉट टू यू बाय सोफी ज्वेलर्स, with a wide range of designs of all kinds of jewellery. Sophie Jewellers, 119-21-21, Oak Lane, Bradford 9. Call 01274-056-014.

0: जी दोस्तों, अभी आपने हिट ऑफ द आवर सुना, यकीनन आप दोस्तों ने इंजॉय किया होगा। बड़ा प्यारा गीत था और आप प्यारे दोस्तों के लिए पेश किया जो इस वक्त सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, अब वक्त हमें बता रहा है कि टाइम चेक का टाइम हो गया है, तो चलते हैं टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 12:14, यानी कि 14:12। जी उमा खान जी।
2: जी आमिर साहब जी, इस वक्त टाइम का टाइम तो आपने बता दिया है
0: जी,
2: तो हम कमर्शियल की तरफ जा रहे हैं।
0: बिल्कुल
2: जी, ठीक है।
0: आप कुछ कहने जा रही थी
2: जी?
0: चलिए कोई बात नहीं, आप बस इतना ही कहती हैं तो ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों कमर्शियल की जानिब। तारिक जुल्फी साहब, फ़ोन करने का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपने फ़ोन किया। आप अपने दोस्तों के लिए इरा खान साहब और मलिक इश्तियाक साहब के लिए गीत सुनना चाहते हैं, उनके नाम
2: जीत कौर ने भी।
0: हाँ जी जी, जीत कौर बहना ने क्या कहा उन्होंने?
2: जी उन्होंने, उन्हें प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है तो वो वही बताने के लिए फ़ोन किया था।
0: अच्छा अच्छा, तो चलते हैं। आप सरगोशी में क्यों बोल रही हैं? क्योंकि आपने उनको सुनाना है
2: जी। जी
0: तो एनीवे दोस्तों चलते हैं, आप कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद आप प्यारा सा गीत सुनेंगे, आप सभी सुनने वालों के नाम।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
2: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
3: You're listening to Sunrise.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने इंजॉय किया होगा। और अब जनाब उमा खान जी, अब अगले गीत की बारी आती है
1: जी,
0: और आप कुछ कहना चाह रही थी।
1: जी जी, अगले गीत के बाद मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरी कोई अपॉइंटमेंट है, तो मैं यहाँ से आप लोग का साथ छोड़ी प्रोग्राम में आज के लिए।
0: अच्छा, आज कल आएंगी सुबह?
1: कल आऊंगी इंशाल्लाह।
0: ठीक ठीक, ओके, आप जाइए, हम प्रोग्राम पेश करते हैं। शुक्रिया आपका, तो कल मिलते हैं 11 बजे आपके साथ।
1: जरूर।
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज।
1: अल्लाह हाफिज।
0: तो दोस्तों, अब चलते हैं, आप दोस्तों के लिए प्यारा सा गीत पेश करते हैं, इंजॉय कीजिएगा इस गीत को, और मेरी जानिब से ये गीत सब सुनने वालों के नाम।

दोस्तों अभी आपने अलका याग्निक और गुर्दा अपने कुमार सानू की आवाजों में आपने प्यारा सा गीत सुना। गुरदास मान का नाम निकलने लगा था क्योंकि कमर्शियल के बाद गुरदास मान की आवाज में एक प्यारा सा गीत होगा जनाब। क्योंकि जीत कौर भैना आपने फोन कर रखा हुआ है और आप के नाम करते हैं इस प्यारे से गीत को गुरदास मान की प्यारी सुरीली मीठी आवाज में आपके नाम करेंगे, साइमा जी आपके नाम करेंगे और गुलाम भाई आपके स्टाफ के नाम करेंगे, तारिजुल्फी साहब और नदीम मंसूर साहब

0: और जनाब अपने जनाब खान भाई और इस वक्त मलिक इम्तियाज साहब आपकी पूरी टीम के नाम करेंगे जनाब, और आपके साथ साथ आपकी टीम में जनाब काफ़ी दोस्त हैं, लेकिन लगता है कि लिस्ट गायब होगी या नहीं, गायब नहीं होगी, मिल गई है जनाब। और मलिक इम्तियाज साहब आपकी टीम में फराज साहब और इकमाज, मनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अलादिता, उमैर, बाबर, आप सबके नाम। और इसी गीत को नज़र करना चाहेंगे, इस वक्त सहेलियाँ काम कर रही हैं। इकरा जी आप सुनना चाहती हैं, नजमा, इफ़त, नाजिया, उमीदा, रुबीना, बुशरा, ताजीम, जायदा और साइमा के लिए। और इसी गीत को मुना जी आपके नाम भी करेंगे और दीगर सुनने वालों के नाम करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शल, कमर्शल के बाद गुरदास मान को, उसके बाद आपसे मिलते हैं।
1: My favorite radio station, Sunrise Radio.
2: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move via the Sunrise smartphone app.
3: We love Sunrise Radio.
4: The greatest station, radio station in the world.
5: Sunrise Radio.
6: Looking for a quality home to rent?
7: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
6: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
8: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831 165, Raman 078 341 77866, Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

जी दोस्तों, अभी आपने गुरदास मान की सुरीली आवाज में बहुत ही सुरीला सा गीत सुना। यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा इस गीत को। और चौधरी मुजफ्फर साहब, फोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तो आप के नाम करेंगे गीत और आपके साथ जो दोस्त हैं उनके नाम भी करेंगे। और उसके बाद लियाकत भाई, आपने भी फोन किया, आपको ये बहुत अच्छी लगी कवाली जनाब इसकी गुरदास मान की, तो आपने आप के नाम की जनाब। और आने वाला गीत भी आप के नाम करूंगा इस उम्मीद के साथ कि आपको अच्छा लगेगा। तो चलते हैं जनाब अगले गीत की जाने। अब कोई समझ नहीं आ रही कौन सा गीत आप दोस्तों के लिए प्ले करूं, तो बातें कर रहा हूं, साथ में गीत भी ढूंढ रहा हूं, कोई अच्छा सा गीत जो है वो आप की नज़र करूं ताकि आपका टाइम अच्छा गुजरे और कोई बोरिंग गीत ना हो जिसमें आप बोर हो जाएं। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि अच्छा सा गीत ढूंढ लूँ आप दोस्तों के लिए। तो आप चलेंगे, गीत ढूंढते हैं और देखते हैं कि कौन सा गीत जो है वो आप दोस्तों के लिए पेश करूं। कोई ख़ास समझ नहीं आ रही, चलिए ये गीत आगे आ गया है, इसी को चला लेते हैं।

0: जी दोस्तों, अभी आपने कुमार सानू की आवाज़ में गीत सुना, वैसे ही चला दिया था, कोई और गीत हाथ नहीं आ रहा था। उम्मीद रखता हूँ आप दोस्तों ने पसंद किया होगा। इसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक कर लेते
1: हैं।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 12:46, यानी कि 12:46। तो चलते हैं जनाब, अब आप दोस्तों के लिए एक प्यारा सा गीत प्ले करते हैं, जो यकीनन आप दोस्त एंजॉय करेंगे। और जनाब, हमें फ़ोन किया था हीरा खान साहब आपने, शुक्रिया फ़ोन करने का, आपके दोस्तों के नाम गीत करते हैं। और उसके बाद हमें दो बार कॉल आई जो मैं उठा नहीं पाया, क्योंकि मैं दूसरी कॉल पे होता था, उनकी कॉल बंद हो जाती थी। तो उनके आखिरी जो चार डिजिट हैं मोबाइल के, वो हैं 4437। तो आप इस नंबर से दोबारा फ़ोन कीजिएगा ताकि आपका नाम रजिस्टर कर दूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब हमें मिस कॉल दें तो आपका नाम आ जाए। और उसके बाद टॉम, आपने फ़ोन किया, शुक्रिया आपका फ़ोन करने का। इस वक्त आप प्रोग्राम कर रहे हैं, सबरीना आप के साथ हैं, और आप उनके लिए एक प्यारा सा गीत सुनना चाहते हैं। तो सदाबहार पुराने गीत की बारी आती है, किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत आपके नाम करूंगा, आपकी जानिब से सबीना के नाम करूंगा। और मीर टॉम साहब, बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का। और उसके बाद इसी गीत को लियाकत भाई आपके नाम भी करेंगे, और ख़ान भाई आप भी फ़ोन कर रहे हैं, शुक्रिया आपका फ़ोन करने का, आपके नाम भी करेंगे। और चौधरी मुजफ्फर साहब आपके नाम भी करेंगे, तारिक जुल्फी साहब आपके नाम भी, ग़ुलाम भाई आपके नाम भी, नदीम मंसूर साहब आपके नाम भी, और दीगर तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशरात को सुन रहे हैं, सफ़ीउल्ला भाई आपके नाम भी। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

जी दोस्तों, किशोर कुमार की आवाज में बहुत ही प्यारा सा गीत था, प्यारे दोस्तों के लिए पेश किया, और टॉम उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया फोन करने का। और अब जनाब अब्दुल क्यूम साफ राइजिंग हॉल से आपने भी फोन किया, शुक्रिया खान भाई, आपसे भी बात हुई अच्छा लगा, और हीरा खान आपसे भी बात हुई अच्छा लगा। तो अब छोटा सा गीत हमें चाहिए जो हमें खबरों तक ले जाए, तो अब छोटा सा गीत चुना मैंने मनहर उदास की प्यारी सी आवाज़ में आप प्यारे सभी सुनने वालों के लिए। तो इन्जॉय कीजिएगा मेरी जानिब से ये गीत आप सभी सुनने वालों के नाम।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है। और दोस्तों प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम के दो हिस्से आप दोस्तों ने पसंद किए होंगे। कोशिश होगी इस आवर में भी आपके लिए अच्छे और प्यारे से गीत पेश करने की कोशिश करें। तो चलते हैं दोस्तों प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से को शुरू करते हैं। रिटा दावर के साथ और रिटा दावर का गीत मस्ती भरा गीत है, आप सभी सुनने वालों के नाम करूंगा। मुझे कभी उम्मीद है कि आप इस गीत को जरूर पसंद करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं रिटा दावर और उसके बाद आप दोस्तों से मिलते हैं।
1: The hit of the hour brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866।
2: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले, तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले। जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल।

0: जी दोस्तों, अभी आपने हिट ऑफ द आवर सुना, इसके साथ ही चलते हैं टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 1:15, यानी कि 1:15 past 1। तो चलेंगे जनाब कमर्शियल की जानेब। कमर्शियल के बाद आप प्यारा सा गीत सुनेंगे। अभी हमने हमें कॉल आई, मोबाइल नंबर आखिर जो 3 digit है 130, आपकी कॉल में नहीं ले पाया। अगर आप अभी आप फ़ोन करेंगे तो मैं आपकी कॉल ले पाऊँगा। तो चलते हैं जनाब, अब प्यारा सा गीत होगा कमर्शियल के बाद, आप सभी सुनने वालों के नाम।
2: 24 hours a day 103.2 This is Sunrise Radio.
3: Got the greatest station, radio station in the world. Sunrise Radio.
4: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
5: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम, इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 Darfield Street ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
6: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 0127 473 5043

जी दोस्तों, अभी आपने दो प्यार भरी आवाज़ों में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और अब जनाब चलते हैं अगले गीत की जाने। प्यारा सा गीत है और इस वक्त बाबर शाह पे दो शहजादे काम कर रहे हैं, बशारत अली सिकंदर अली, आरफ अली तो पाकिस्तान गए जनाब, तो और दोनों शहजादों के नाम करूंगा और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी करूंगा, और ग़ुलाम भाई आपकी नाम करूंगा, नवीद भाई आपके नाम करूंगा और पूरे स्टाफ के नाम करूंगा। मलिक इम्तियाज़ साहब आप फ़ोन कर रहे हैं, शुक्रिया फ़ोन करने का, और आपकी पूरी टीम के नाम एक बार फिर करूंगा, इकमाज, मुनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अलादिता, उमैर, बाबर और इफराज के नाम और दीगर आप सभी सुनने वालों के नाम। तो चलते हैं, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, और इसी गीत को इकरा जी आपकी जानब से नजमा सभा के लिए इफ़त, नाजिया, उमीदा, रुबीना, बुशरा, ताजीम, जायदा और साइमा के नाम भी करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को, और माजी चाहते हैं इसी गीत को अमरीन सभा आपके नाम भी करेंगे।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और आबिद भाई आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। आपके नाम भी गीत करते हैं, आपकी जानिब से आपके पूरे स्टाफ के नाम गीत करते हैं और आपके साथ साथ जनाब दीगर तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं। गुलाम भाई आपके नाम भी और आपके स्टाफ के नाम भी, नवीद भाई आपके नाम भी और सायमा जी आपके नाम भी और दीगर तमाम दोस्तों के नाम करते हैं। तो चलते हैं, सुनते हैं प्यारा सा गीत कमर्शियल के बाद।
1: 24 hours a day.
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2 or 3 bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
4: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a 3-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY, on Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226, Mirdosh Kumar 07899055525, Gurkirit 07886545970, Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना अलका याग्निक और उदित नारायण की प्यारी सी आवाज़ों में। तो अब वक्त हमें बता रहा है कि जोहर की अजान का वक्त हो चुका है, तो चलेंगे सुनेंगे जोहर की अजान, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं, सुनते रहिएगा।
1: ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई।
1: जी सामईन, अभी आपने जोहर की अजान सुनी और इसके साथ ही चलते हैं टाइम चेक कर लेते हैं।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं इस वक्त 1:44, यानी कि 44 मिनट्स पास्ट वन। तो जनाब, जैसा कि हम कहते रहे कि कल का दिन यानी 2nd of September मिड डे 12 बजे जनाब हम लंदन में भी जो है वो सनराइज रेडियो आप सुन सकेंगे, लॉन्च कर रहे हैं। तो 12 बजे कल ज़रूर सुनिएगा। 12 की खबरों के बाद एक प्यारा सा पैगाम होगा, मैसेज होगा, जो आप ज़रूर सुनिएगा उसको 12 बजे की खबरों के बाद। तो चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे एक प्यारा सा गीत, सदाबहार गीत। तारिक भाई, आपने फ़ोन किया, शुक्रिया आपका फ़ोन करने का। आपके नाम करेंगे आबिद भाई, आप के नाम करेंगे मलिक इम्तियाज़ साहब, आपकी पूरी टीम के नाम अब्दुल क्यूम साहब और ख़ान साहब, हीरा ख़ान साहब और तारिक जुल्फी साहब, लियाकत भाई, चौधरी मुजफ्फर साहब और नदीम मंसूर साहब और सफ़ीउल्ला भाई और दीगर तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशात को सुन रहे हैं। और आप जहां कहीं भी हैं, आपके नाम किया ये गीत।
3: My favorite radio station, Sunrise Radio.
4: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move via the Sunrise smartphone app.
5: We love Sunrise Radio.
6: The greatest station, radio station in the world.
7: Sunrise Radio.
8: Looking for a quality home to rent?
9: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
8: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
10: ਗਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਘੁੰਮੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕਸੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
11: ਓਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ।
10: ਚਾਚਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਚਾ?
11: ਚਾਚਾ ਜੂਲਰ ਓਕ ਲੇਨ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 9 ਵਾਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਕੰਡੀ ਮਾਰੀ ਨੱਕਾ ਨਤੀਲਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ 2 ਪੌਂਡ ਨਾ ਕੰਨ ਸਲਾਣੇ ਨਾ 1 ਪੌਂਡ, ਛਾਪਾਂ ਤੇ ਬੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨੇ ਜ਼ੇਵਰ ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਪਰ ਦੇਣੇ ਨੇ।
10: ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ?
11: ਚਾਚਾ ਜੂਲਰਸ ਓਕ ਲੇਨ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 9, ਟੈਲੀਫੋਨ 01274 488935।

सदाबहार गीत लता जी और एसपी बालासुब्रमण्यम की सुपर डुपर आवाज़ों में ये बहुत ही पॉपुलर आपने ज़माने का गीत आप सभी दोस्तों के लिए पेश किया। तो दोस्तों अब हमें वक्त बता रहा है कि हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो अख्ताम पजीर ही हुआ जाता है। तो अब जनाब आप दोस्तों से इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। उम्मीद रखता हूँ कि आप दोस्तों को आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। कोशिश होती है आप दोस्तों के लिए अच्छे प्यारे और म्यारी गीत आप पेश करें। तो कहां तक कामयाबी हुई है दोस्त आप ही बता सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आमिर शहजाद को इजाजत दीजिएगा। अगर अल्लाह ने चाहा और जिंदगी ने वफा की तो आपके साथ मेरी मुलाकात कल सुबह 11 बजे होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह निगबान एंड गुड बाय।

0: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: फ्री कोर्सेज एट शिपली कॉलेज, free teaching assistant courses, free health and social care courses, free childcare courses, free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.

0: मोहसिन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ईसॉल कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शराइत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।

0: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: ऋषि's विजन प्रेजेंट्स आनंद उत्सव विद आनंद मूर्ति गुरुमा इन बर्मिंगम। डिस्कवर प्रैक्टिकल टूल्स टू क्वाइटन द माइंड एंड एक्सपीरियंस लास्टिंग इनर पीस डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर्ड मास्टर। A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane, Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901-831-165, Raman 07834177866, Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
2: Official Media Partner, Sunrise Radio.
3: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
4: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
3: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
4: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
3: बुकिंग्स और मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 01274-733-732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।

0: मैंने कहा आता है, क्या तुझे तबला बजाना आता है?
1: भाई वाह, क्या कहने, क्या जवाब मारा है।

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-35043।
3: My favorite radio station, Sunrise Radio.
4: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 0127 473 5043.

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ले मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: गलियां गलियां घूमी ते पैरां जुत्तियां भी कसी गईं पर सस्ता सोना नहीं मिलिया। ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना। चाचा केड़ा चाचा? चाचा जूलर ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 आले। जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी, नक्का नतीला सिर्फ 2 पौंड ना। कान सलाने ना, इक पौंड छापां ते बंगा नहीं, कोई मजदूरी नहीं। ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है। जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने। एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता। चाचा जूलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-4885।

0: जुतियां भी कसी गयी पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: लुकिंग फॉर अ क्वालिटी होम टू रेंट
3: व्हेदर यू नीड अ 1, 2 or 3 bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
4: The day.

0: कफन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30, दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited-time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012-74-735-043.
3: Ladies and gentlemen,
4: thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
3: As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

0: सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रेडफोर्ड 7230300।
1: ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕਸੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਓਹੋ, ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ। ਚਾਚਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਚਾ?
2: ਚਾਚਾ ਜੂਲਰ ਓਕਲੈਂਡ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 9 ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਕੱਢੀ ਮਾਰੀ, ਨਕਨਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ 2 ਪੌਂਡਾਂ ਨਾਲ। ਕ

0: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रेडफोर्ड 7230300।
1: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-3504-3।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744462 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.

टूट रहा है अब विश्वास, 5 वर्ष धुंधला आकाश, कौन द्वार हम खटकाएं, कौन से वादे दोहराएं।